न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को।

0: Essie Girl, your winning song this hour from the movie Dostana.
1: Listener's Choice, brought to you by Utsav Plus.
2: I love you, Dr. Noemi Gandhi.
3: ये तुम्हारा बचपन है प्यार नहीं उम्र देखिए तुमने अपनी हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता
4: तब तक लोगों की परवाह करती रहोगे तक अपने दिल की आवाज से दूर भागते रहोगे
5: Watch Serab, a heartfelt musical romance every day at 6 p.m. only on Utsav Plus.
1: The Gold Rate with Sunrise Radio on 963 and 972 a.m. in London, nationwide on DAB, worldwide via sunriseradio.com on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers and for the Radio Player and Nation Player app. Stay connected to your favorite Sunrise Radio 24 hours a day, 7 days a week.
0: Gold is trading at £99.30 per gram.
6: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.
0: All right, before getting into the next song, then let's get another quick listen to your trio. Taking you back to 2006 with today's trio. Can you name all three actors?
7: जब तक उसे इस बात का पता तक चलेगा हम यहाँ से जा चुके होंगे Anyways, I'm gonna see you at the airport tonight, okay?
8: मैं जानती हूँ तुमने जो भी किया कुछ हद तक मेरी खुशी के लिए किया मगर ना तो मैं खुश थी और ना ही मुझे कभी लगा तुम जो कर रहे थे वो सही था आज तक
9: क्या प्रॉब्लम थी आपके लिए यही कि इतने कम वक्त में वो आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था आप याद रखिए अगर आपकी बात सच साबित हुई तो मेरी नजरों में इसके जिम्मेदार आप ही होंगे
0: Can you name all three peeps in today's trio? There's no Tabu, no Kriti Sanon, no Charisma, no Sushma Reddy.

बंदा रॉबिनहुड मानते हैं, क्योंकि वो अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता कुछ नहीं, देता कुछ नहीं, देता कुछ नहीं।